रंग तिरंगे ने ज्ञापन करते ब जिया अंदर जियो सब की जान ला सब की तेरे बस तेरा कर भला तेरा कर आनंद बधाई तुझ कर मन महता ते जा अपना पुजल सर्व कला भरपूर दिसा जग कथा नानक दास दास दुनिया के देवता जी तेरा नाम सत है श्री वै श्लोक कौन कृपाणी पिता माता धर्म दूसरा तदाई दया खेला सगल जगत

चेत आवन का सर का सर्व सुख होवे। काल से दी की देख देख पता है चौंकियां चंडे बुंगे जुगो जुग अटल रहे। धर्म का जयकार खालसा दिसावे बुलावे। खालसे जी नु नाम दान सिखी दान गुरमत दान बुद्ध विवेक रात रक्षा दान। खालसे जी नु श्री हरिमंदर साहिब अमृतसर सरोवर जी दे इशनान। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार मेले बुलारे। श्री अकाल साहिब जी बाबा अटल जी संतोखसर जी विवेकसर जी रामसर जी कालसर।

Thank you.
सो विचार हजारक देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक ना लेख है सो दुर्जो सासना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत भंग हल्ले ना हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पर श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार विचारे सार की धार बछैया तोर दे मलिन वासन माते के जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया साहेब श्री सब को सिर नायक जाचन 101 दवैया दानव दे फनि निसाचर भूत भविक भवान जपेंगे जीव जीते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुण्य प्रतापन बाढ़ जाय धन पापन के वो पुंज खपेंगे सात समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र समय लोग छपेंगे मानो इंद्र गजेंद्र नराधेव जांत लोग को राज करेंगे कोटि स्नान गजादिक दान अनेक स्वयंवर साज परेंगे ब्रह्म महेश्वर भीषण सचिव पद अंध फसे जम फांस परेंगे जे नर श्रीपद के प्रस है पग ते नर फेर ना देह धरेंगे कहा भयो जो दोलोचन मूंद के बैठ रहे हो भग ध्यान लगायो नात प्रिय लिए सा समुद्रन लोग गयो पर लोग गवायो बास की ओ विख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सो न ले हो सब जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो काहू ले पाहन पूज धर्यो सिर काहू ले लिंग घर लटकायो काहू लखे और अवाची दिशा में काहू पुछा को शीश निभायो को भूतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन धायो पूर गिरिया और जो सब ही जाग श्री भगवान को भेद ना पायो
ਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਮਰ ਛੰਦ ਹਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿਹੀਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਕਲੰਕ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਅਨਛਿਜ ਤੇਜ ਉਦਾਰ ਅਨਭਿਜ ਰੂਪ ਦੁਰੰਤ ਸਭ ਜਗਤ ਭਗਤ ਮਹੰਤ ਜਸ ਤਿਲਕ ਭੂ ਭ੍ਰਿਤ ਭਾਂਤ ਚਾਰ ਚਾਰ ਨਿਧਾਨ ਅਕਲੰਕ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਸਭ ਲੋਕ ਸੁਖ ਵਿਦਾਰ ਕਲ ਕਾਲ ਕਰਮ ਵਿਹੀਨ ਸਭ

सब कीन जगत बसार अव्यक्त रूप उदार जय कोट इंद्र निपार कई ब्रह्म मिशन विचार कई राम कृष्ण रसूल बिन भगत को ना कबूल कई सिंध बिंद नगेंद्र कई मच्छ कच्छ फणेंद्र कई देव आदि कुमार कई कृष्ण बिशन अवतार कई इंद्र बार मुहार कई वेद अमुख चार कई रुद्र शुद्र स्वरूप कई राम कृष्ण अनूप कई कोप का भणंत कई वेद भेद कहंत कई शास्त्र सिमृत बखान कहूं कतत ही सो पुराण कई अगन होत्र करंत कई उर्द ताप दुरंत कई उर्द भाव संन्यास कहूं जोग भेद उदार कहूं निवली करम करंत कहूं पौन हार दुरंत कहूं तीरथ दान पार कहूं जग करम उदार कहूं अगन होत्र अनूप कहूं न्याय राज विभूत कहूं शास्त्र सिमृत रीत कहूं वेद सिउ विपरीत कई देश देश फिरंत कई एक ठार स्थंत कहूं कर जल में जाप कहूं सत तन प्रताप कहूं बाद बने करंत कहूं ताप तनह संत कहूं ग्रह धर्म अपार कहूं राज रीत उदार कहूं रोग रहता भरम कहूं कर्म करत अकर्म कहूं शेख ब्रह्म स्वरूप कहूं नीत राज अनूप कहूं रोग शोक विहीन कहूं एक भगत अधीन कहूं रंग राजकुमार कही कहूं वेद व्यास अवतार कहीं ब्रह्म वेद रटंत कहीं शेख नाम उच्चरंत बैरा कहूं संन्यास कहूं फर फिरत रूप उदास सब कर्म फोकट जान सब धर्म नहपल मान बिन एक नाम आधार सब कर्म भरम विचार तौप्रसाद लगुन राज छंद जले हरि थले हरि उरे हरि बने हरि गिरे हरि गुफे हरि छिते हरि नबे हरि इहा हरि उहा हरि जिमी हरि जमा हरि अलेख हरि अभेघ हरि अधोघ हरि अद्वैघ हरि अकाल हरि अपाल हरि अछेद हरि अभेद हरि अजंत्र हरि अमंत्र हरि सोतेज हरि अतंत्र हरि अजात हरि अपात हरि अमित्र हरि अमात हरि अरोग हरि अशोक हरि अभर्म हरि अकर्म हरि अजय हरि अभय हरि अभेद हरि अछेद हरि अखंड हरि अभंड हरि अदंड हरि अप्रचंड हरि अतेव हरि अभेव हरि अजेव हरि अछेव हरि भजो हरि थपो हरि तपो हरि जपो हरि जल सुई थल सुई नदी सुई नद सुई वृक्ष सुई पत सुई छित सुई ऊर्ध सुई भज स्वंग रट स्वंग ठट स्वंग जिमी तुई जमा तुई मकी तुई मका तुही अभू तुई अभय तुई अक्षय तुई अक्षय तुही जत सुई व्रत सुई गत सुई मत सुही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तो प्रसाद कबित खूक मल हारी का जगत हा विभूत हारी की तुआ मसान बास करो ही करत है घुगुमड वासी लगे डोलत उदासी मृग तरवर सदी मोन सादे ही मरत है बिंद के सदयता हीज की पटैया देत बंदरा सदी उपाय नागे फिरत है अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण ज्ञान के विहीन छिन कैसे के तरत है भूत बन चारी थे छौना सब दूधाधारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है त्रेण के भछैया धन लोभ के तजैया दे तो गौवन के जैया ब्रिग भैया मानियत है नभ के उड़ैया ताए पंछी की बढ़ैया देर बगला बिडाल ब्रिग ध्यानी ठानियत है जेते बड़े ज्ञानी तीनों जानी पर बखानी नाए ऐसे ना प्रपंच मन भूल आनियत है भूम के बसैया ताए भूचरी के जैया कहे नभ के उड़ैया सो चिरैया के बखानी है फल के भछैया ताए बांद्री के जैया कहे आदित फिरैया दे तो भूत के पछानी है जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जाग आखे भछैया सो चकोर सम मानिए सूरज सिवाय तय काल की बढ़ाई दे चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानिए नारायण कच्छ मस्तेंदुआ कह सब काल नाम काल जय ताल में रहत है गोपीनाथ गुजर गोपाल सब धेनचारी रिखी के नाम के महंत लहियत है माधव भवर और कन्हैया नाम कंस को बदैया जम दूत कहियत है मूड रूढ़ पीटत न गूढ़ता को भेद पावे पूजत न ताहे जाके राखे रहियत है विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरी साल सदा प्रत पाल जम जालते रहत है जोगी जटा धारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काल भूख पै दे पै सहत है निवली करम जल हो पावक पवन हो मधो मुहे पाए ठाडे न बहत है मानो फनी देव दानो न पावे भेद भेद औ कतेव नेत नेत के कहत है
नाचत फिरत मोर बादर करत घोर दामनी अनेक भाव करे करत है। चंद्रमा ते शीतल न सूरत तपत ते इंद्र सुन राजा।

शिव से तपस्या ब्रह्मा से न बेचारी सनत कुमार सी तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकड़ी फिराए फिरत है। एक शिव भय एक एक फेर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा विष्णु के ते वेदों पुराण के ते सिमरत समुन के होए होए बिताए है। मोदी मदार के ते अंशनी कुमार के ते अंश अवतार के ते काल भद भय है। पीरो पिकाम्बर के ते गनेना पर ते भूमि ते होके फिर भूमि ही मिलाए है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र की छाया कई कोसला चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरते बड़े बड़े राजन के द्रव को दलत है। मान से मही पौ दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भोज दंड को करत है। दारा से दिल्ली सर दुर्योधन से मानधारी भोग भोग भूमंत भूम में मिलत है। से दे करे अनेक तोपची कपट भेद पोस्ती अनेक दारी बाबत है शीश का भयो मल्ल जब कांडत अनेक दंड सोतना डंडात अष्टांग सतीश का भयो रोगी जब डारे रहे उर्दभुग मनते न मुड़ने रायो आदिश कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना भीन कैसे भावे जगदीश का शीश पट कत जाके कान में खजूरा धसे मूड छट कत्र मित्र पुत्र हो शोक सौ आको चरया फल फूल को भचया सदा बन को भ्रमया और दूसरो ना भोग सौ का भयो भेड़ जो घसा सी वृक्षण सो माटी को बछैया बोल पूछ ली जाए जोग सौ कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेटे पर लोग सौ नाचो ही करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करो ही करत है। एक पाए ठाटे सदा बन में रहत वृक्ष फूक फूक पाँव भूम श्रावक धरते है। पाहन अनेक युग एक ठौर बास करे कागा और चील देश विचरत है। ज्ञान के विहीन मैदान में न हुजलीन भावना यकीन दिन कैसे के तरत है। जैसे एक स्वागी कहो जोगी अभैरागी बने कब हूँ सन्यास भेद बने कह दिखावई कहो पौन हरि कहो बैठे लाए तारी कहो लोभ की खुमारी से अनेक गुण गावई कहो ब्रह्मचारी कहो हाथ पे लगावे वारी कहो दंडधारी को लोगन भ्रमावई कामना अधीन परियो नाचत नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे भ्रम लोग पावई। पंच बार गिदर पुकारे पर शीत काल कुंचर गदहा एकदा पुकारही कहा भयो जो पे कलवत्र लियो काशी भी चीर चीर चोटारा उठारन सो मारही कहा भयो फांसी डार बूढ़े जड़ गंगदार डार डार फांस तक मार मार डार ही डूबे नरक धार मुड़ ज्ञान के बिना विचार भावना भीन कैसे ज्ञान को विचार ही ताप के सहते जो पपाइया तापना तापना अनेक तन घायल सत है। जाप के किए थे जो पाइया जाप देव कूदना सदी तुई तुई उचरत है। नव के उड़े थे जो नारायण पाइया तन लगा पंछी डोल बो करत है। आग में जरे थे गत रण की परत कर पताल के बासी क्यों भुजंग ना तरत है। को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो को ब्रह्मचारी को जति अनुमान वो हिंदू तरह को राव जी मां सभी मानस की जात सब एक पहचान वो कर्ता करीम सोई राजक रहीम होई दूसरो ना भेद कोई भूल भ्रम मानबो। एक ही सेव सब ही को गुरु देव एक ही स्वरूप सब एक जो जानबो। देहुरा मसीह सोई पूजाओ निवाज होई मन सब एक पैन एक को भ्रमाव है। देवता देव जच्छ गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेष को प्रभाव है। एक नैने के काने के दे के बान खाग बादा दादा आपको रलाव है। अल्लाह भेक सोई पुराना कुरान हुई एक ही जरूर सब एक ही बनाव है। जैसे आगते कनु का कोड आग उठे न्यारे न्यारे होए के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूरते अनेक धूर पूरते धूर के कनु का फिर धूरी समाएंगे। जैसे एक नत्ते तरंग कोड उजते पान के तरंग सबे पान ही कहाएंगे। तैसे विश्व रूपते अभूतपूर्व प्रकट हुए ताहिते ऊपर सबे ताही में समाएंगे। केते का चमज केते उनको करत भच्छ केते अच्छ वच्छ हुए सपाच्छ उड़ जाएंगे। केते न बीज अच्छ पच्छ का करेंगे भच्छ केतक प्रत्यक्ष हुए पचाए खाए जाएंगे। जल कहाँ थल कहाँ गगन के गान कहाँ काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज युवा तेज में अतेज जैसे तेज लीन ताही ते ऊपर सब ताही में समाहेंगे। कुकत फिरत केते रोवत मरत केते जल में डुबत केते आग में जरत है। केते गंगवासी केते मदीना मक्का निवासी
केतक उदासी की फरमाई फिरत है। करवत सहत कहते भूम में गड़त कहते सुहा पे चढ़त कहते दुख को भरत है। गैन में उड़त कहते जल में रहत कहते ज्ञान के भीन जग जारी मरत है। शोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घंस हारे चंदन लगाए हरे चोआ चार पूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गा हरे गोरन मनाए हरे मड़ी मट लीप हरे भीतन लगाए हरे छापसी गाय हरे गंदरा बजाए हरे किन्नर सब पज हरे पंडित तपंत हरे तापसी। तो प्रसाद भुजन प्रयाद छंद ना रागंग ना रंगंग ना रूपंग ना रेखंग ना मोहंग ना ग्रोहंग ना द्रोहंग ना द्वैखंग ना कर्मंग ना भ्रमंग ना जन्मंग ना जातंग ना मित्रंग ना सत्रंग ना पितरंग ना मातंग ना नेहंग ना गेहंग ना कामंग ना धामंग ना पुत्रंग ना मित्रंग ना सत्रंग ना भामंग अलेखंग अभेखंग अजोनी स्वरूपंग सदा सिद्धता बुद्धता वृद्ध रूपंग नहीं जाने जाई कछु रूप रेखंग कहाँ पास ताको फिरे कौन भेखंग कहाँ नाम ताको कहाँ कह कहावे कहाँ कह बखानो कह मै न आवे ना रोगंग ना सोगंग ना मोहंग ना मातंग ना कर्मंग ना भरमंग ना जन्मंग ना जातंग अद्वैखंग अभेखंग अजोनी स्वरूपे नमो एक रूपे परेयंग पराप्रम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदंग अछेद अद्वै अविनाशी ना जातंग ना पातंग ना रूपंग ना रंगे नमो आद भंगे नमो आद भंगे किते कृष्ण से कीट कोटे उपाय सारे गड़े फेर मिटे बनाए अगाधे अभय आदत वैमनासी परे अंग परापरम पूरण प्रकाशी ना आदंग ना व्यादंग अगाधंग स्वरूपे अखंडत प्रतावाद अच्छा विभूते ना जन्मंग ना मरणंग ना वर्णंग ना व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे ना नेहंग ना गेहंग सनेहंग सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे ना जाते ना पाते ना सत्रे ना मित्रे सो भूते भविके भवाने अचित्रे नारायंग ना रंगंग ना रूपंग ना रेखंग ला लोभंग ना जोभंग भूतंग अभेखंग ना सत्रंग ना मित्रंग ना नेहंग गेहं सदैवं सदा सर्व सर्वत्र सनेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं अजोनी अछेद अद्वै अजोहं न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधंग न रोगंग न सोगंग अभय निर्विखादंग अछेदंग अभेदंग कर्मंग अकालंग अखंडंग अभंडंग प्रचंडंग अपालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भर्मंग सदैवं सदा सत्य वृद्धं स्वरूपे स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे निरुक्तं प्रभातं प्रतापे अयुक्तं अछेयाद अविक्ते अथापे विभुक्तं अछेयाद अच्छा स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहं न गेहं न शोकं न साकं परेयं पवित्रं पुनीतं अताकं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न भर्मं न शर्मं न साके न भर्मं न चर्मं न कर्मं न बाके न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आज रूपे नमो आज रूपे कहूं कंज के मंज के भरम भूले कहूं रंग के राज के धर्म लूले कहूं देश के भेष के धर्म धामे राज के साज के बाज तामे कहूं अक्षर के पक्षर के सिर साजे कहूं सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लाधे कहूं अंग के रंग के संग देखे कहूं जंग के रंग पेखे कहूं धर्म के कर्म के हरम जाने कहूं धर्म के कर्म के भरम माने कहूं चार चेष्टा कहूं चित्र रूपं कहूं परम प्रज्ञा कहूं सर्वभूपं कहूं ले गृहं कहूं दे दोखं कहूं औखदी रोग के शोक शोकं कहूं देव विद्या कहूं दैत वाणी कहूं जज गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी सात की तामसी हो कहूं योग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं योग युक्तं कहूं भूम की भुगत में भरम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जज विद्या धरे मानवी हो कहूं राशि हो कहूं राज कन्या कहूं श्रेष्ठ के पृष्ठ के रिष्ठ कन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योमवाणी कहूं को की काम कथा कहानी कहूं भद्र सारंग कहूं भद्र रूपंग कहूं भद्र वाणी कहूं क्षुद्र स्वरूपंग कहूं वेद विद्या कहूं काव्य रूपंग कहूं चेष्टा आचार चित्रंग स्वरूपंग कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान के गीत गावे कहूं शुद्ध सेकंग कहूं ब्रह्म धर्मंग कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्मंग कहूं ज्वाल स्वरूपंग जरारा देहं कहूं ने देहं कहूं त्याग रेहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हरता कहूं भोग त्यागं कहूं राज साजं कहूं राज जीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आरबी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूं देश भाख्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारंग कहूं जंत्र रीतं कहूं शस्त्र धारंग कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान गीतं कहूं मलेज भाग्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत्य विद्या कहूं नागवाणी कहूं गारुड़ गुड़ कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो
गंभीर विद्या अभूतं प्रभाहो। कहूं चैल छारा धर छत्र धारी, कहूं राज साजंग धिराजाधिकारी। नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता, छेदी अच्छे आदत विधाता। न त्रस्तं न ग्रस्तं समस्तं स्वरूपे, नमस्तं नमस्तं त्वस्तं अभूते। तो प्रसाद पादड़ी छंद अभ्यग तेज अनुभव प्रकाश, अच्छा स्वरूप अदयनाथ। अंतोट तेज अनखुट भंडार दाता, दुरंग सर्वंग प्रकाश। अनुभूत तेज अनशेषगात करता, सदी हरता सनाथ। आसन अडोल अनुभूत कर्म दाता, दयाल अनुभूत धर्म। जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जा, जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मन। जय कर्म भरम नहीं धर्म ध्यान, जय ने ज्ञ अभ्योध मन। जय जाल पार नहीं शत्रु मित्र, जय ने ज्ञ चैन चित्र। जय रंग रूप नहीं राग रेग, जय जन्म जात नहीं भरम भेग। जय कर्म भरम नहीं जात पार नहीं ने पितृमान। जय नाम धाम नहीं बरक, जय रोग शोक नहीं सत्र साग। जय त्रास बार नहीं दे ना, जय आदंत नहीं रूप राग। जय रोग शोक नहीं जोग जुगत, जय त्रास आद नहीं भूम भुगत। जय काल ब्याल कट्यो न अंग, अच्छा स्वरूप है अभंग। जय नेत नेत उचरंत बे, जय अलग रूप कथत कते। जय अलग रूप आसन डोल, जय मित तेज अच्छा तो। जय ध्यान काज मुंजन अनंत, कई कलप योग साधन तुरंत। तन शीत घाम पर खासंत, कई कलप एक आसन बितंत। कई जतन योग विद्या विचार साधन, तद पावत न पार। कई उर्ध्वा देशन भ्रमंत, कई उर्ध्वमद पावक झुलंत। कई सिमरि शास्त्र उचरंत वेद, कई कोप कांत कथत कते। कई अगन होत्र कई पौन हार, कई करत कोट मृत को आहार। कई करत साग पे पत्र भच्छ, नहीं तदव दे होवत प्रत्यक्ष। कई गीत गान गंधर्व रीत, कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत। कहूं वेद रीत जग आद करम, कहूं अगन होत्र कहूं तीर धर्म। कई देद देद भाका रटन, कई देद देद विद्या पढ़ंत। कई करंत भांत भांतन विचार, नहीं नयक ताल पायत न पार। कई तीरथ तीरथ भरमस्व भरम, कई अगन होत्र कई देव करम। कई करत वीर विद्या विचार, नहीं तदपताल पायत न पार। कहूँ राजरीत कहूँ योग धर्म, कहूँ सिमरि उत्तरस्व करम। निवली आद कर्म हस्तदान, कहूँ अश्वमेध मक्को बखान। कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार, कहूँ योग रीत कहूँ वृद्धचार। कहूँ करत जज गंधर्व गान, कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घदान। कहूँ पितृ कर्म कहूँ वेद रीत, कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत। कहूँ करत शास्त्र सिमरित उचार, कही भजत एक पग निराधार। कई नेह दे कई गे वा, कई भ्रमर दे देशन उदास। कई जल निवास कई अगन ताप, कई जपत उर्द लटकंत जाप। कई उर्द त्योग कई जपत जोग कल्पंग प्रजंत, नहीं तदव तास पायत न अंत। कई करत गोड़ विद्या विचार, नहीं तदव देश देखे मुरा। बिन भकत सगत नहीं परत पान, भव करत होमर जगदान। बिन एक नाम एक चेत लीन, भोगटो सर्व धर्मा विहीन। तो प्रसाद तोटक छंद जय जम्पो जुगण जुओ जुअंग, भय कंपो मेर पयाल भुवंग। तम ताप सर्व जलेरु थलंग, धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग। अनखेद सरुअ भेद अभ्यंग, अनखंड भूत अछेद अछियंग। अनकाल पाल दियाल असुंग, जय ठटिया मेर अकाल भुवंग। अनखंड अमंड प्रचंड रंग, जय रचंग देव अदेव बरंग। सब कीनी दीन जमीन जमा, जय रचंग सरम कीन मका। जय रागना रूपना रेग रुखंग, जय तापना सापना शोक सुखंग। जय रोगना शोकना भोग भोंग, जय खेद न भेद न छेद छयंग। जय जातना पातना मात पितंग, जय रचंग छत्री छत्र छिदंग। जय रागना रेखना रोग भणंग, जय द्वैखना दागना दो गणंग। जय अंड ते ब्रह्मंड रचियो, तो चार करी नौ खंड सचियो। रस तामस तेज तेज कियो, अनुभव पादा प्रचंड लियो। श्री सिंदर बिंद नगिंद नगन, श्री जच गंधर्व फणिंद भुजंग। रच देव देव भेव नरंग, नरपाल निरपाल कराल त्रिगंग। कई कीट पतंग भुजंग नरंग, रच अंडज सेतज उद भुजंग। किय देव देव सराज वितंग, अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग। प्रभ जातना पातना जो जुतंग, जय तातना मातना भ्रात सुतंग। जय रोगना सोगना भोग भुवंग, जय जम्पे किन्नर जच जुवंग। नर नान नपुंसक जाय, किय गण किन्नर जय भुजंग जिये। गज बाज रथाधिक पांच गण, भव भूत भविक भवान तुवंग। जय अंड सेतज जे रज, रज भूम काल पताल जलंग। रज पावन पाव प्रचंड बलि, बन जा कियो फल फूल कली। भो मेरा का निवासितंग, रज रोज का द चंद्र मितंग। दुत चंद नेसा दीप दही, जय पाव पान प्रचंड मई। जय खंड खंड प्रचंड किए, जय छत्र उपाय छपाए दिए।
जय लोक चतर चार रचे नर गंधर्व देव देव सचे अन सूदा भूदा शूद मतंग अन गादा व्याद नाद गतंग अन खेद भेद छेद रंग जय चा चतर चक्र फिरंग जय रागना रंगना रेग रूपंग जय सोगना भोगना जोग जुगंग भो भंजन गंजन आश्रंग जय बंद देव अदेव नरंग गण किन्नर जाच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभान गंज भृतंग जय पारना पावत पूर मतंग अन खंड सुरुआ दंड प्रभा जय जमपत वेद पुराण सभा जय वेद कतेव आनंद कह जय भूता भूतना भेद लह जय वेद पुराण कतेव जपै सो सिंध अधो मुक्ताप तपै कई कल्पन लो तब ताप करे नहीं नै कृपा निद पान परे जय फोकर धर्म सवै तज है एक छिद कृपा निद को जप है तिव या भो सागर गोतर है भ भूल ना दे पुनर्धर है एक नाम बिना ने कोल वृति वेद उच्चारण सा सुति जो वारस के चस के रस है ते भूल ना काल फंदा फस है तो प्रसाद नराज छंद अगंज आद देव है भंज भंज जानिया भूत भूत है सदा गंज गंज मानिया अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दा सदीव सर्व साथ है अनाथ नाथ नाथ है भंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा अनूप रूप स्वरूप अक्षय तेज मानिए सदीव सिद्ध सिद्ध दा प्रताप पत्र जानिए ना राग रंग रूप है ना रोग राग रेख है अधोग दाग दग है अभूत भरम अभेक है न तात मात जात है न पाच्यन वरण है अधेग असेग अभेग है सदीव विश्व भरण है विश्वम्बर विश्व नाथ है विशेष विश्व भरण है अजमी जमान के विखय सदीव करम भरम है अद्वैक है अभेक है अलेख ना ज्ञानी है सदीव सर्व ठौर में विशेष आन मानी है न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराना कुरान नेत नेत कह बतावई न कर्म में न धर्म में न भरम में बताइए अगन जा देव है कह सो कह पाइये जिमी जमान कह बिखे समस्त एक ज्योत है न घाट है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है न हान है न बान है समान रूप जानिए मकीन मकान प्रमाण तेज मानिए ना दे है ना गे है ना जात है ना बात है ना मंत्र है ना मित्र है ना तात है ना मात है ना अंग है ना रंग है ना संग है ना सात है ना सुदोग है ना दाग है ना द्वैग है ना दे है ना सिंह है ना स्यार है ना राव है ना रंग है ना मान है ना मौत है ना साग है ना संक है ना जच है ना गंधर्व है ना नर है ना नार है ना चोर है ना शाह है ना शाह को कुमार है ना ने है ना गे है ना दे को बनाओ है ना छल है ना छिद्र है ना छल को मिलाओ है ना जंत्र है ना मंत्र है ना तंत्र को स्वरूप है ना राग है ना रंग है ना रेग है ना रूप है ना जंत्र है ना मंत्र है ना तंत्र को बनाओ है ना छल है ना छिद्र है ना छाया को मिलाओ है ना राग है ना रंग है ना रूप है ना रेग है ना कर्म है ना धर्म है अजन्म है अभेक है ना दात है ना मात या ख्याल खंड रूप है अछेद है अभेद है ना रंग है ना भूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है भंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है ना रोग है ना सोग है ना भेद है ना भंड है ना अंग है ना रंग है ना संग है ना सात है प्रिया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है ना सीत है ना सोच है ना घ्राम है ना घाम है ना लोभ है ना मोह है ना क्रोध है ना काम है ना देव है ना दैत है ना नर को स्वरूप है ना छल है ना छिद्र है ना छिद्र की विभूत है ना काम है ना क्रोध है ना लोभ है ना मोह है ना द्वैग है ना भेक है ना दुई है ना द्रोह है ना काल है ना बाल है सदीव दयाल रूप है अगंज है भंज है भर्म है अभूत है अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत अभेग है बलिया रूप राग रंग है ना द्वैग है ना भेक है ना काम क्रोध कर्म है ना जात है ना पात है ना चित्र चयन वरण है व्यंत है अनंत तेज जानिए अभूम अभेज है सदा अक्षय तेज मानिए न आद है न ब्याद है अगाद रूप लेखिया दो दाग दग है छाया प्रताप पेखिए न कर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है न छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है अभंग है अनंग है अगंज सी विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ मोह कार है न आद है न गाद है न ब्याद को विचार है न रंग राग रूप है न रूप रेग रार है न हाव है न भाव है न दाव को प्रकार है
गजादपि नराधपि करण सेव है सदा सितस्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा अगस्त आद जे बड़े तपस्पति विशेखी है बेंत बेंत बेंत को करंत पाठ पेखी है अगाध आदेव की अनाद बात मानिए न जात पात मंत्र मित्र शत्रु सनेव जानी है सदियु सर्व लोक के कृपाल ख्याल में रह तुरंत द्रोह देह के अनंत भान सोद है तो प्रसाद रू अमल छंद रूप रागना रेख रंगना जन्म वरण भीन आदनाद आदपुर धर्म करम प्रवीण जंत्र मंत्र न तंत्र जागो आदपुर।

जात जनम न काल करम न धर्म करम प्रवीहीन तीर जातना न देव पूजा गोर के न अधीन सर्व सपत पतार के तर जानिया जय ज्योत शेष नाम सहस पन्न नेत पूरन होत सो सोध हटे सब सुर विरोध दानो सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर करब पड़त पड़त थके महाकवि घड़त गाढ़ अनंत हार हार कहो सबो मिल नाम नाम दुरंत भेद भेद न पायो रखियो न सेव कते देव दानो गुण मानो जच न जाने जेब भूत भगवान भूपद आद नाद नाथ अगन बाय जले थले में सर्व ठौर निवास दे के ने सने अबे नाद अजीत सर्व गंजन सर्व पंजन सर्व ते अनभीत सर्व करता सर्व हरता सर्व दयालद भेक चक्र चैन बरन जाको जात पात न भेक रूप रेखना रंग जाको राग रूप ना रंग सर्व लायक सर्व घायक सर्व ते अनभंग सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल दीन बंद आद स्वामी आदेवपाल दीन बंद प्रवीण श्रीपद सर्व को करतार बंद भरन चैन चक्र जाको चक्र चैन कार जात पात न गोत्र गाता रूप रेख न बरन सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भू को भरन दोष्ट गंजन शत्रु पंजन परम पुरख प्रमाथ दोष्ट हरता श्रेष्ठ करता जगत में जय गाथ भूत भव भवेक भगवान प्रमाण देव अगंज आदना श्रीपद परम पुरख अभंज धर्म के अनक्रम जेता कीन तौन पसार देव देव गंधर्व किन्नर मच्छ कच्छ अपार भूम का जले थले में मानिए जय नाम दोष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम दोष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोविंद मित्र पालक शत्रु घालक दीन दयाल मुकंद अघाव दंडन दोष्ट खंडन काल हुके काल दोष्ट हरना पुष्ट करना सर्व के प्रतपाल सर्व करता सर्व हरता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निर्भाम सर्व भुक्ता सर्व युक्ता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार दोष्ट हरता विश्व हरता आदि रूप अपार दोष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदेव अखंड भूम का जले थले में जपत जाप अमंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब विचार आदेव पार श्री पर दोष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान गाता मश्रम मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेद न पावे से रुद्र मुखचार कोट इंद्र उपेंद्र व्यास सनत सनत कुमार गाय गाय थके सब गुण चक्रत फे मुखचार आद अंत न मद जाको भूत भगवान सत द्वापर तृतीया कलयुग छत्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामन गाय गंधर्व पार हार हार थके समय नहीं पाइए तह पार नारद आदिक वेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके समय कर कोट कष्ट तुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पच्छर पार सो सो थके महासुर

कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा कह जी तब का मरण है कवन स्वर्ग नरक को सुगड़ा को मूर्ता कहा तरक अवतरक दोहरा को निंदा जल है कवन कवन पाप का धर्म कवन योग को भोग है कवन कर्म अब कर्म दोहरा कहो सो सम का सो कह दम को कहा कहंत को सूरा दाता कवन कहो तंत को मंत दोहरा कहा रंग राजा कवन हरग सोग है कवन को रोगी रागी कवन कहो तत् मोह तवन दोहरा कवन श्रेष्ठ को पुष्ट है कहा श्रेष्ठ को विचार कवन श्रेष्ठ को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा कहा कर्म को कर्म है कहा भ्रम को नाद कहा चितन की चेष्टा कहा अचेत प्रकार दोहरा कहा नेम संयम कहा ज्ञान अज्ञान को रोगी सोगी कवन कहा धर्म की हान दोहरा को सूरा सुंदर कवन कहा जो को सार को दाता ज्ञानी कवन कहो विचार अविचार प्रसाद धीरक तिरभंगी छंद दुर्जन दल दंडन असुर विहंडन दुष्ट निकंदन आदवृते चचरासुर मारण पतित उदाहरण नरक निवारण गूढ़ गते अच्छा खंडे तेर प्रचंडे खंड दंडे अलखमते जय जय होसी मै का सुर मर्दन रंप कपर्दन छत्र छते आसुरी विहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट दंडन रूपते चंडासुर चंडन मुंड विहंडन धूम्र विध्वंसन महक मथे दानव प्रहारन नरक निवारण अधम उदाहरण उर्द अधे।

जय जय होसी मैं कासुर मर्दन राम कपड़न आदृते डावरू डवंक बवर भवंक भुजा फरंक तेज बरंग लंकुड़िया फांद आयुध बांध है सैर विमर्दन काल सुरंग अष्टाय चमक भूकण दमक असीम झमक फुंक फनंग जय जय होसी मैं कासुर मर्दन राम कपड़न दैत जिड़ंग चंडासुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंकण ध्वजा फरंकण फणी फुंकारण शोध जिते सरदार विवरकन दोष प्रकर खण पुष्प हरकन दोष मथे जय जय उसी मै का सुन मर्दन भूम काल तल उर्दा थे दामनी प्रहासन सुचव निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गुण गते रक्ता सुराचन ज्योत प्रमाचन निर्दय निराचन धर्म रिते सुरोणदा चिंती अनल बेंती जोग जयंती खड़क धरे जय जय हुसी मैं कासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अगोग निवारण दोष प्रजारण श्रेष्ठ उपारण शोध मते फणियर फुंकारण बाघ बकारण शस्त्र प्रहारण साध मते सैती सनाहन अष्ट प्रवाहन बोल निपाहन तेज अतुलंग जय जय होसी मै कासुर मर्दन भूम काल पताल जलंग चाचर चमकारन चिच्चुर हारन धूम धकारन द्रप मथे दाड़वी प्रदंते जो जयंते मनोज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद्र प्रकाशन सूरज प्रतेजन अष्ट भुजे जय जय होसी मै कासुर मर्दन भरम विनाशन धर्म ध्वजे घुंघरू घमंकन शस्त्र झमंकन फणियर फुंकारण धर्म झुजे अष्टाढ़ प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दोष प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाह है शोध सना है अगम थाए एक वृते जय जय होसी मैं कासुर मर्दन आद कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंदन दोष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावरु कुमारे अधमुदारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंगारोहण बितल तले जय जय होसी सब ठौर निवासन बाय पताल आकाश अनले संकटि निवारण अधम उदारण तेज प्रकर्तन तुन दबे दुख दोग दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाध अच्छे सुतता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय होसी शास्त्र प्रकर खंड आद अनिला गाद अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंत रंगण तत्यक्ष सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उठारे तूर भुजे दामनी दमन के हर नंगे आद अतंके क्रूर कथे जय जय होसी रक्ता सुर खंड सोम चक्र निसोम मथे बारज विलोचन वृतन विमोचन सोच विचोचन कौज कसे दामनी प्रहासे सुखसर नासे सुमृत सुभासे दोष ग्रसे चंचला प्रगंग चंचला प्रांगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय होसी मैं कासुर मर्दन आद अनाद अगाध उर्धंग घंट का विराजय रुणजन भाजय भ्रम भाजय सुन सुरंग कोकल सुन लाजय कल्प भाजय सकुब राजे मधुरंग दुर्जन दल दज्जय मंथन रिझय सबेन पजय रो रणंग जय जय होसी मैं कासुर मर्दन चंड चकर्तन आद गुरंग चाचरी प्रजोदन दोष विरोधन रोष अरोधन क्रूर वृते धूमराज विजुंसन प्रलय प्रजुंसन जाग विजुंसन शोध मते जालपा जयंती सत्र वतंती दोष प्रसाहन गाढ़ मते जय जय होसी मैं कासुर मर्दन आद गाद गाद गते खत्रियाण खतंगी अभय भंगी आद अनंगी अगाद गते ब्रजराज बिहंडन चक्षुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृते सुर नर प्रत पारण पद धारण दोष्ट निवारण दोक हरे जय जय होसी मै कासुर मर्दन विश्व विध्वंसन श्रेष्ठ करे दामनी प्रकाशे उन्तन्नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकरखण सर्वर वरखण दोष प्रधरखण वितल तले अष्टाद बाहन बोली बाण संत पनाहण गूढ़ मते गते जय जय होसी मै कासुर मर्दन आद अनाद अगाद वृते दुग दो प्रवचन सेवक रक्षण सांझ प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सनाए दोष प्रता है अर्दल गाहे धोक हरे गंजन गुमाने अतुल प्रमाने संत जमाने आद अंते जय जय होसी मै कासुर मर्दन सांझ प्रदक्षण दोष्ट हंते कारण करीली गर्भ गहिली जो जतीली तुंद मते अष्टाय चमकन शत्र झमकन दामिन दमकन आद वृते डुग डुगी दमन के बाघ भवन के भुजा फरंगे शुद्ध गते जय जय होसी मै कासुर मर्दन आज गाद आदमते चचरासुर मारण नरक निवारण पद धारण एक भटे पापान विहंडन दोष प्रचंडन खंड खंडन काल कट्टे चंद्रानन चारण नरक निवार पद धारे मुंड मथे जय जय होसी मै कासुर मर्दन धूम्र विदुंसन आद कथे रक्तासुर मर्दन चंड चकर्दन आ दानो अर्दन विडाल बधे सरदार विभर खंड दोर जन धरखण अतुल अमर खंड धर्म ध्वजे
धूमराज विधुंसन श्रोणा चंसन सौन्य पान सोम मथे। जय जय होसी मैकासुर मर्दन आद अनिल अगाध कथे।

तो कहो जथा मत्रण तंत करता करी विकादर कृपाल भय भूतन भय दया दाता दुरंग दुख दोगर हत जय नेत नेत सब वेद कहत कई ऊंच नीच की नो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाओ सब जीव जंत जानंत जाए मन मूड क्यों ना सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सज सासुर सिवंत कई पलट सूर सिद्धा कराए प्रभ एक रूप द्वय कह लखाए अनछज तेज अन भय प्रकाश दाता दुरंग अद्वय अनाथ सब रोग शोक ते रहत रूप अन भय काल अक्षय स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुख दोग हर दाता दयाल अंजन विहीन अन भंजना जल थल प्रभा सर्वत्र साथ जय जात पार नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय सत्र मित्र दो एक सार अक्षय स्वरूप अब चल अपार जानी ना जय जय रूप रेख बास तास कह कौन भेख कह नाम तास है कमल जा जय सत्र मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चैन नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्दंग विराज सिद्धंग स्वरूप उद्धंग अपाल युद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अनछेद तेज अनभेज अदाग जल थल मही बंतन दुरंत जय नेत नेत निर्दिन उचरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दोग दहता उदार कई कोट इंद्र जय पान हार कई करट कई कोट रुद्र जुगिया दुआर कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जय नेत नेत निर्दिन उचरंत तो प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल कर नित संत उपार गनी मन कर पच पशु नग नग नाधिप सर्व समय सब गुरु प्रतपार भोगत है जल मै थल मै पल मै कल कह नहीं करम विचार दीन दयाल दयानित दोखन देखत है पर देत न हार दाहत है दू दोखन को दल दुजन के पल मै दल डार खंड खंड प्रचंड पहारन पूरन प्रेम की प्रीत संभार पार न पाए सके पदमा पद वेद कते भवेद विचार रोजी ही राज लोक राजक रोग रोहान की रोजी न टार कीट पतंग कुरंग भजंगम भूत भविभान बनाए देव देव खपे अहमेव न भेव लखे भ्रम शिव भरमाए वेद पुराण कते पुराण हसे थके कर हाथ न आए पूरन प्रेम प्रभाव बिना पत सिंह केन श्री पदमा पद पाए आद अनंत गाद अद्वेग सो भूत भविभान वह है अंत विहीना नातम आद आग अधोग अक्षेत्र अच्छा है लोगन के गढ़ता हरता जल में थल में भरता प्रवह है दीन दयाल दया कर श्रीपत सुंदर श्री पद्मापत ए है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देव ही सने सबोतन नेह भ्रक गह छह है जान को दे अजान को दे जमीन को दे जमान को दे है काहे को डोलत है तो मरी सुत सुंदर श्री पद्मापत ल है रोगंते अर सोगंते जल जोगंते बहु भांत बचावे सत्रों अनेक चलागत औत अनेक न लागन पावे रागत है अपनो कर दे कर पाप संपूर्ण भेटन पावे और की बात कहाँ कह तो सो सो पेट ही के पट बीच बचावे जाज भुजंग सो दानो दे अभे तुम्हें सब ही कर ध्यावे भूम काल पताल रसा चल जाज भुजंग सब ऐसे न्यावे पाए सके नी पार प्रभाव को नेत ही नेत वेद बतावे खोल थके सब ही कुजिया सुरहार परे हर हाथ न आवे नारद से चतर आनंद से रु नारी से सब हु मिल गायो वेद कते न भेद रखे सब हार परे हाथ न आयो पाए सके नी पार माप सैत स्नान सनंतन ध्यायो ध्यान धरो तय को मन में जह को अमितो सब जग छायो वेद पुराण कते पुरा भेद पास सब अपहारे भेद न पाए सके अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे रागना रूपना रेखना रंगना सागना सोगना संग तिहारे आदे अनादे अगादा भेग अभेग जपियो तिनि कुलतारे तीरथ गोट किए स्नान दिए वदान महाव्रत धारे देश प्रयोग कर भेद तपोधन के धरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे वो न्यास करे मुकारे दीन दयाल काल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे
तो प्रसाद कबित अत्र के चलैया छे छे छत्र के धरिया छत्र धारी के चलैया मा सत्रन के साल है दान के दिवैया मा मान के बड़े अवसान के दिवैया कटैया जम जाल है जोध के जितैया विरुद्ध के मिटैया मा बुद्ध के दिवैया मा मानु के मान है ज्ञान के गाता मा बुद्धता के दाता देव काल के काल मा काल के काल है पूर्वी न पार पावे हिंगला हिमालय जावे गौर गर देरी गुण गावे तेरे नाम है जोगी जोग साधे पौन साधना की देख पादे अरब के अराबी अराधे तेरा नाम है फरागे फरंगी माने कंधारी कुरेसी जाने पश्चम के पश्चिमी पछाने निज काम है मरहटा मंगल तेरी मानसो तपस्या करे दृढ़ वह तिलंगी पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फेर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलत है रो के रोहेले मांग देश के मंगेले वीर बांगसी बुंदेले पापुंज को बलत है गोखा गुन गावे चीन व चीन के शीश नी आवे तिब्बती ध्याय दो देह के दलत है जीने तो हे ध्यायो तीने पूरन प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सो फलत है देव देव तान को सुरेश दान बान को महेश गंग धान को अभेश कही अत है रंग में रंगीन रा रूप में प्रवीण और कहूं पे नदीन साध अधीन कही अत है पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है।

अद्वैन आशासन अडोल अद्वैन उपमातोल अक्षय सर्व व्यक्त नजान भाव परम सर्वा प्रमात जत मही बंतन प्रफुल शोभा बसन जत प्रडुल बंतन दुरंत खग मृग महान जत प्रफुल सुंदर सुजान फुल तंग प्रफुल लहत मोर सिर ढुर जान मन मत चौर कुजरत कमाल।

जी से जिन जुग मह सुख वासी से मुकत भय जिन हर ध्याया जी तिन तूटी झमकी फासी जिन निर्भव जिन हर निर्भव ध्याया जी तिन का भव सब गवासी जिन सेविया जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर ध्याया जी जन नानक तिन बल जासी ते

विनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तव चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सभय तुम घावो आप हाथ दै मोहे बचावो सुखी बसै मोरो परवार सेवक सिख सभय कर तारा मोर अच्छा निज कर दै करिय सब बैरन को आज संघरिय पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ध्याऊं जो बर चाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरिय मरण काल का त्रास नवरिय पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तुज जो करिय रक्षा राख ले हो मह राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन

तुभुज खान बहर रच दीनी, कहूं फूल राजा होए बैठा, कहूं सुमट भयो संकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आज जुगाद स्वरूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रण घाता, जे अस ध्वज तौ शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत होए मरे, पुरख जावन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार धिए हैं, ताके काल निकट नह है, रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्टन जाए निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो, रिद्ध सिद्ध घर मो सब होई, दुष्ट छा छह सकह न कोई।

ते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता। किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन

बचन विचार चौपई। मैं नागन सह प्रथम मनाऊ, किशन बिशन कब हू नह ध्याऊ। कान सुने पहचान नतन सो, लव लागी मोरी पग इन सो।

जुग जुग अटल रहे धर्म का जयकार। खालसा जी साहिब बोलो जी। खालसे जी को नाम दान, सिखी दान, गुरमत दान, बुद्ध विवेक रहत रिछा दान। खालसे जी को श्री हरिमंदर साहिब, अमृतसर सरोवर जी के इशनान, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दार मिले। बोलो जी। श्री अकाल तख्त साहिब जी, संतोख सर जी, विवेक सर जी, राम सर जी, कौल सर जी।

ठीक 8:15 से गुरद्वारा गोबिंदबाग साहब विखे पहुँच के गुरु साहिबान जिया का इतिहास वेख के गुरु महाराज जी दियाँ खुशियां प्राप्त करो जी। वाहे।

भाई चिकन कडा बेगार भाई च धरती दबी भार भाई चिंद फ्रै सिर भार भाई च राजा धर्म दुआर भाई भी सूरज भाई भी चंद कोह करोड़ी चलत ना अंत भाई भी सिद्ध बुद्ध सुरनाथ।